0: To listener of Maputo Corridor Radio, welcome. You are listening to this radio station of your heart. It's Maputo Corridor Radio. And once again, we meet you to talk about movies. It's your movie update for this week. I hope you're having a great time already. Today, we talk about Indian movies, action movies, and also obsession-relating movies. I hope you're already enjoying. We're going to remind you also about how Michael's movie is doing in Maputo and Mozambique. So I hope you are connected to this radio station of your heart with the greatest time coming ahead. My name is Beth Kamadim, and we have the next minutes to discuss movies. We kick off with Achan Meradil, an Indian Hindi language movie.
1: Sorry, Chandni.
2: सुन गलती हो गई यार प्लीज ओपन द डोर यार प्लीज चांदनी सुन दरवाजा खोल यार
3: चांदनी बहुत रेगुलर है यार वो
4: इसलिए पसंद है मुझे
5: किसी का गला खराब हो रहा था मेरी वजह से तो पूरा ठीक कर देते हैं
6: मतलब
5: हमेशा के लिए
4: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई
5: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती
2: है
4: अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना तो शायद मैं भी तुझे माफ नहीं करती

0: गलती की है उसके लिए माफी मांग चुका हूँ मैं। आज भी मांग रहा और मांगता रहूंगा।
1: और कितनी गलतियाँ करोगे आरव?
2: का लेना चाहती है क्योंकि तू अब भी उससे प्यार करती है।
1: हाँ लेकिन इज्जत प्यार से बड़ी होती है।